नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 16 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 6 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़े अज की सभा के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते हुणे तुसी सरवण कर रहे सी भगती रास्ते नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते कड़ी दी सुई दे मुताबिक 7 बज रहे ने। वेला हो रहा है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा।

वाह जी वाह, अलार्म बज रहा, अलार्म बज रहा, लो जी लो अलार्म बज गया सीगा, मैनूं पता लग गया सीगा तुहाडी घड़ी ते अलार्म बज रहा। हाँ हाँ, अलार्म जो है ना वह बजाया है आकाशवाणी की 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ने। लग गया पता ना कि कौन आया। हाँ हाँ, मेरे ना वेख रही सी कि तुसी सैर करके आके बैठे हो ते अंदर ना रूम दे विच ना अलार्म दी आवाज़ जिहड़ी है ना वह आ रही सी कि 7 बजे का अलार्म भी लगा होया। जे वीकेंड है, थोड़ा लेट वाला अलार्म चलता है क्योंकि स्नूज कर दिता होना ना 2-3 बार। लो जी साह लै लो थोड़ा जा, तुसी सैर करके आयो ते और ताज़ी ताज़ी हवा कहो जी रही अज फिर सवेरे सवेरे। अरे मैं तो सवेरे सवेरे आ रही थी ना, वाह जी वाह, मतलब फ्रेश एयर जी अंदर जा रही थी ना, वाह क्या जी ताजगी का एहसास करा रही थी। अज शर्मा जी, वर्मा जी सारे जने ना एक पार्क विच इकट्ठे हुए थे। वाह, मैं जो तो देखा ना सारे पार्क विच इकट्ठे ने, शर्मा जी भी, मिसिज शर्मा भी ने, वर्मा जी है, मिसिज वर्मा जी है, बत्रा साहब ने, मिसिज बत्रा भी ने, अरे गोपाल जी भी ने, और नाल दे नाल राम जी भी ने, और नाल दे नाल सारा दा सारा परिवार है। अज क्या ही बात नहीं, मतलब अज पार्क विच पूरी रौनक लगी हुई सी। होर की रौनक लगे क्यों ना, पहले एक सब तो बड़ी चीज़ ना, बच्चों ना छुट्टियाँ चल रही ने ते कितने ना इदा असर, इदा प्रभाव जरा सी कह सकते ना वो परिवार के मैंबर्स के उत्ते भी नाल दे नाल पैंदा है। सवेरे सवेरे टिफिन वाली जिहड़ी एक थोड़ी जी रिलैक्सेशन हुंदी है ना वो छुट्टियां दे विच मम्मी नूं भी मिल जाती है ते बाकी टब्बर नूं भी मिल जाती है। न्याणा घर एक होवे जां हुण दो है ना, सारे जने ना सवेरे घुमा छड़दे ने सारिआं नूं। लो जी लो, इन्नियां गल्लां कर लईआं ते मैं दस्सिआ ही नहीं, मैं तां निशा बोल रही हाँ तुहाडे नाल। आ हा, पता लग गया होना तुहानूं वैसे। ला जी पॉजिटिव वाइब्स है, ये कहनी है जिवें मैं हुणे गल करी सी कि सारे मैं पार्क विच बैठे देखे है ना, और पार्क विच की चल रहा सी, चल रहा सीगा योगा। ओहो वाओ, हाँ जी योगा टीचर जिहड़े

0: जानकारी लेने तो बाद एक होर गल करिए फिर आप अच्छा तुसी चले हो कम ते फिर ओके जाओ
1: गुड बाय गुड गर्ल।
0: वैसे छुट्टियां ने ना छुट्टियां दे विच ना मम्मी मैनू लगदा ज्यादा बिजी रहिंदी है वेली तां नहीं हुंदी होणी ना
1: किथे ज्यादा बिजी रहिंदी है मम्मी सारा दिन बच्चियां दी चिकड़ चिकड़ चिकड़ चिकड़ घर दे विच चलदी होएगी है ना चलदी है ना देखिया हस पई ना मम्मी ओ लै जी रोहन दी मम्मी ते हस पई बिल्कुल जी रोहन की मम्मी के सिर से जो स्माइल आई ना देख के पता चल गया कि बच्चों के बीच ना वाह घर के अंदर रह के चिगड़ चिगड़ चलती है लेकिन मेरी प्यारी मम्मी हो तुसी काम करो ना बच्चों ना अपने नाल छोटे छोटे कामों में एंगेज कर लो बिजी कर लो हाँ लाइक हम देखो प्यास तो बहुत लगती है सारे लगती है ना पानी दिया बोतलां जड़ियाँ खाली हुई पड़ी बस एक आवाज़ प्यार ना मारनी है बेटा रोहन देखो

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए या लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी रेनबो दाई जलंधर केंद्र है और 8 बज के पूरे जिहड़े है कह सकते हैं कि 49 मिनट जिहड़े है और 40-45 सैकेंड जिहड़े है हो गए ने और वेला हो रहा जी FM न्यूज़ हेडलाइनस आ

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो

0: ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੁੜਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ .gov.in।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੈਲੀਲੋਅ ਨਿਆਂ ਬੰਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਟੈਲੀਲੋਅ ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-44-54 ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ www.telelaw.in ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश लई विदेशी निवेशकां नूं नियमां विच छुट दित्ती। खेतीबाड़ी मंत्रालय ने कहा संतुलित खादां दी वरतों अते पाएदार खेती लई 9,42,000 तों वध किसान खेत बचाओ अभियान विच शामिल होए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले च संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच अस्थाई मैंबरशिप दी दुरवरतों करन लई पाकिस्तान दी निंदा कीती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नवी दिल्ली विच नेपाल दे विशेष मंत्री शिशर खनाल नाल गलबात करनगे। व्यापार निवेश आवाजाई ते ऊर्जा समेत कई मुद्दियां ते होवेगी चर्चा। पंजाब दे कर विभाग ने लोहे अते इस्पात दे टैक्स चोरी खिलाफ मुहिम तहत मंडी गोबिंदगढ़ अते खन्ना विच 200 तो वध वाहन रोके ते लगभग 7 करोड़ रुपए दा माल जब्त कीता। केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड ने अंक तस्दीक अते पुनर मुलांकन लई अर्जियां जमा करन दी आखरी तारीख कल 7 जून तक वधाई। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल हनेरी चलन बारे पेश निरगोई कीती। शतरंज विच ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज दा खिताब जीतन वाले पहले भारती बने अते SAFFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप दे फाइनल विच भारत दा मुकाबला गोवा च अज शाम 6:30 बजे बांग्लादेश नाल होवेगा। ऐसन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

कहते हैं कोई छुपाता है, कोई बताता है, कोई रुलाता है, प्यार तो कर किसी को ना किसी से हो ही जाता है। है फर्क बस इतना कि कोई निभाता है तो कोई आजमाता है। दोपहर दा खूबसूरत जहा सफ़र तुसी कर रहे हो जी, इंजॉय प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज़, ट्यून इन के तो हाया 102.7 FM रेनबो। अगला गीत आ रहा है मुझे कितना प्यार है तुमसे, रफ़ी साहब ते लता जी दे आवाज़ दे विच, फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं अनुराधा। श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, यानी वो चिकित्सा सेवा जो अचानक हुई दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों, फ्रैक्चर आदि के समय दी जाती है। आपके सवालों के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। साथ ही डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार
2: सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या है?
3: देखिए, किसी भी स्थिति, कोई इंसान अगर सोचता है कि अगर मेडिकल सुविधा ना ली जाए
2: जी,
3: तो उसके या तो जान को खतरा हो, या उसके लिम या किसी अंग का खतरा हो, या किसी ऑर्गन का खतरा हो। और अमूमन ये स्थितियाँ ऐसी होती है कि अगर टाइमली मेडिकल केयर ना मिले तो उसको बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे आप समझ लीजिए, हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, कोई छत से गिर गया, या एक्सीडेंट चोट वाली बीमारी या चोट हो गया, किसी को किसी ने सांप ने काट लिया, किसी को सांस की बीमारी हो गई
2: जी,
3: किसी को लकवा मार गया, तो

0: ये सारी जो चीजें हैं ये आपात स्थिति है और इसमें जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा लेना अत्यंत आवश्यक है।
1: जी, सुविधाएं लेना आवश्यक है, ये आपसे जरूर जानेंगे। और बहुत सारी चर्चा अभी तो शुरुआत है और हमारे श्रोता उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आज क्या क्या हमारे लिए बहुत कुछ आप दोनों विशेषज्ञों से जानने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

को भी, छोटे को भी, खड़े को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।

0: श्रोताओ, आज रेडियो डॉक्टर में हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैम नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
1: जी एक्सपर्ट को भी, दोनों को जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी,
1: जी
0: दोनों
1: जी सर, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग तड़पते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और लोग सहायता करने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं कि जिससे कि कानूनी कार्रवाई होती है, तो डरते हैं कि उनका नाम लिखा जाएगा, उनको कार्रवाई में साथ रखा जाएगा। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक है, मुझे आप थोड़ा समझाएं।
0: प्राथमिक चिकित्सा आप जानना चाह रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या दी जाए, और कोई डर की बात तो नहीं है।

0: जो लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल, ये जानना चाहते हैं आप ना। जी
1: जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लोग क्यों असमर्थ अपने आप को फील करते हैं और क्यों डरते हैं कि लीगल कार्रवाई या कुछ पुलिस केस या कुछ इससे घबराते हैं। तो अगर मैं जानकारी आपको दूं कि सरकार ने इस पे बहुत सारे कदम उठाए हैं और एक इस तरीके का एक नियम लॉ या कहें कि एक गाइडलाइंस सब तरफ से आई है जिसको हम लोग कहते हैं गुड समेरिटन लॉ। इसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो मददगार हो सड़क दुर्घटनाओं में स्पेशली जो मदद करे उस पर किसी तरीके का कोई भी कानूनी कार्रवाई या उसको तकलीफ ना दिया जाए। और इसमें सरकार ने इनाम का भी एक सिस्टम रखा हुआ है और इसको हर अस्पताल अब अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे लोगों को ना उनसे हम नाम पूछते हैं ना उनका हम डिटेल लेते हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम है ताकि जो चोटग्रस्त मरीज हैं ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं उनको मदद समय से मिल पाए। तो ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
0: तो इनको अपनी जानकारी दे दी, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या हैं, तो डॉक्टर अरुण सर आपके पास आना चाहेंगे कि सिर्फ इलाज मेडिसिन के तौर पर ही हो सकता है या कैसे इसकी रोकथाम की जाए, बचाव कैसे किया जाए।
2: जी मेडिकल इमरजेंसी के दो पहलू हैं। हम एक वाक्य बहुत समय से सुनते आए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी किसी भी चीज़ से बचाव अगर हम करते हैं तो उससे होने वाली सारी तकलीफों से बचा जा सकता है। अभी जो मेडिकल इमरजेंसी की बात हो रही है उसमें जैसे मान लीजिए अभी दुर्घटना की, अभी हमारे कॉलर भाई साहब ने पूछा कि दुर्घटना में हम क्या करेंगे। तो दुर्घटना में सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि दुर्घटना से हम बचें कैसे। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, सड़क के किनारे होने वाली दुर्घटना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सावधानी कम होने से दुर्घटना घटती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मोटरसाइकिल चालक और हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं या कोई रेड लाइट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या एक पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री हैं वो अपना फुटपाथ छोड़ के सड़क पे आ जाते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां होती हैं जो दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती हैं। तो पहले ये जागरूकता हो और हम इन नियमों का पालन करें कि हम दोपहिया वाहन पे हेलमेट चला के ही बैठेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे तो हम सीट बेल्ट बांध के रखेंगे और अगर हम सवारी यात्री भी हैं तो भी हम सीट बेल्ट लगाएंगे, और अगर हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो हम सिग्नल का उस पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये एक उदाहरण हुआ। दूसरी तरफ एक दुर्भाग्य की बात होती है कि लोग अल्कोहल पीकर फिर गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं जो दुर्घटना का आमंत्रण है। तो कहने का मतलब कि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है, पूरी सावधानियां अगर हम बरतें तो दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा मेडिकल इमरजेंसी की बीमारियों में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, या किसी व्यक्ति को अचानक स्ट्रोक हो गया और उसकी बॉडी पैरालिसिस हो गई, ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं पहले से उपस्थित किसी बीमारी की वजह से। यानी किसी को उच्च रक्तचाप की अगर बीमारी है तो उसको स्ट्रोक हो सकता है, किसी को अगर हार्ट की बीमारी पहले से है तो हार्ट अटैक हो सकते हैं। ऐसे में उस मरीज के साथ साथ उनकी देखभाल करने वालों का ये दायित्व बनता है कि वो ऐसी स्थिति में ना आए, इसके लिए डॉक्टर ने जो सलाह दी है उनकी दवाई को लेके कि आप निश्चित समय पे नियम से जो दवाइयाँ बताई गई है वो खाएं, जो आपकी जीवन शैली में परिवर्तन कहा गया आपके खान पान के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में, उनका अगर आप नियम से पालन करेंगे तो आप उस दुर्घटना से होने से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो मेरा तो सभी श्रोताओं से कहना ये रहेगा कि आप दुर्घटना होने मत दीजिए, दुर्घटना से बचिए। जहां भी कोई दुर्घटना की संभावना दिखती है, दुर्घटना होने की जो संभावित कारण है उनको दूर कीजिए।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। चाहे हमारी शारीरिक स्थिति हो या फिर हम कहीं दुर्घटना बाहर शिकार होते हैं, दोनों ही डिपेंड करता है कि हम कितने सतर्क हैं। डॉक्टर साहब ने ये आपको आगाह कर दिया है, फिर भी कोई भी स्थिति आपके साथ आती है तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगी कि ट्रॉमा की चर्चा क्यों ज्यादा होती है इतनी।
1: देखिए ट्रॉमा भी एक इमरजेंसी है। हम अमूमन कहते हैं कि किसी चीज से चोट लगी, कोई गिर गया, रोड ट्रैफिक इंजरी हो गई, आपस में झगड़ा हो गया, ये सारे कारण हैं ट्रॉमा के। चूंकि ये रोड ट्रैफिक इंजरी सबसे कॉमन है ट्रॉमा के कारकों में और ये 18 से 45 साल का एज ग्रुप जो है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है और लगभग हर साल हम करीब 1,70,000 से ऊपर लोगों को खोते हैं जो यंग हैं, जो हमारे उनके घर के और साथ में देश के कहिए कि ब्रेड अर्नर हैं, कंट्री के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए इसकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि ये हमारी यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है और ट्रॉमा एक ऐसी

0: स्थिति है जो सर ने अभी बड़ा अच्छा बताया, इसको हम रोक सकते हैं
1: जी।
0: ये पहले से कोई बीमारी नहीं है, हम इसको बचाव कर सकते हैं। इसलिए हम ये टोटल जो डेथ है 2.25 लाख के आसपास, इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर बचाव पे जाए तो।
1: चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे पास जिज्ञासाएं भी बहुत सारी आ रही हैं आज के विषय से जुड़ी हुई। आप हैं मिस्टर रवि जोशी लिख रहे हैं कि आई नीड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रॉमा मैनेजमेंट, व्हाट आर फाउंडेशनल गाइडलाइंस एंड रिसोर्सेज इन ट्रॉमा मैनेजमेंट।
0: सो रवि जी धन्यवाद, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले तो ये जान लें कि एक ऐसे ट्रॉमा की स्थिति या चोट वाली स्थिति हो तो करना क्या चाहिए। तो जैसे अगर मैं एक रोड ट्रैफिक इंजरी की एग्जांपल को लूँ, तो सबसे पहले देखना है जो बचाव करने जा रहा हो वो देखे कि क्या मैं सेफ हूँ इस जगह पहुँचने के लिए
1: जी।
0: तो अपनी सेफ्टी पहले देखे, ऐसा ना हो कि एक की जगह दो हो जाए। दूसरा कि अब वो जो घायल व्यक्ति है उसको एक सेफ जगह पर ले जाएं। सेफ जगह पर ले जाने के बाद अब दो काम करनी है हमें, एक तो एम्बुलेंस या मदद के लिए कॉल, और दूसरा कि किसी को फ्रैक्चर हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा मौतें होती है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो क्या वो दबाव दे के हम रोकें उसको
1: जी।
0: और कोई फ्रैक्चर है तो क्या हम थोड़ा स्प्लिंट कर सकते हैं। जैसे ही मदद आए तो बाकी एम्बुलेंस और बाकी लोग जब आ जाएंगे तो उसकी मदद होगी, तो ये थोड़ा देखना चाहिए। रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे और बहुत सारे रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, जिसको आप देख के कॉमन पब्लिक एक ट्रॉमा में क्या कर सकती है, इसके लिए सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, आप जरूर इसका उसको उपयोग करें।
1: डॉक्टर साहब, कैसे जाना जाए कि इमरजेंसी की स्थिति है, क्योंकि वो नाजुक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि घर में ही क्योरेबल हो। कैसे जाना जाए कि इमरजेंसी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है?
0: सो एक तो ये है कि कोई व्यक्ति जो पहले से ठीक था, अपना काम सारा कर रहा था या बातचीत कर रहा था, उसमें कोई उसको तकलीफ नहीं थी, अब वो कह रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ प्रोलॉन्ग हो रही, लंबी चल रही है। लंबी कहने का मतलब कि आपको लग रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट उससे भी ऊपर जा रहा हो, या लगे कि जैसे बेहोश हो गया कोई, या अचानक से धड़कन बहुत तेज हो गई, या और कोई स्थिति है जैसे किसी को चाकू से कट गया या कुछ हो गया, तो ये सारे आपात स्थिति है। बर्न
1: जी,
0: हो गया,
1: बर्न जी,
0: स्नेक बाइट हो गई, किसी ने पॉइजन खा लिया, ये सारे आपात स्थितियां हैं जिसमें हमें हेल्थ की सुविधा या मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा नंबर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे जो कि जिस पर तुरंत हेल्प मिल सके हमारे श्रोताओं को?
0: अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक आपात स्थिति के लिए नंबर दी गई है 112, सो 112 पे आप कॉल करके मेडिकल हेल्प या किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी तो उसी से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया जाएगा
1: जी।
0: अगर आपको लगता है और आपको जानकारी है कि आपके यहाँ ये एम्बुलेंस का नंबर है, जैसे दिल्ली में 102, बाकी जगहों पे 108, ये कॉमन नंबर्स हैं जिस पे लोग फोन करके एम्बुलेंस सुविधाएं लेते हैं, तो उससे आप मदद ले सकते हैं
1: जी। तो उम्मीद है श्रोताओं कि आपने ये नंबर्स नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि आज जो विषय है हमारा बहुत ही हटके है और हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ताकि आपको अगर कोई भी जो है इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप कैसे उससे बचाव कर सकते हैं और किस तरह से आपकी जो दिक्कतें हैं वो आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब वापस आना चाहेंगे आपके पास डॉक्टर साहब के जो ये सारी स्थितियां हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बचाव की स्थिति तक पहुंचने के लिए अगर हमें जो पहला ट्रीटमेंट देना होता है घर पे, वो किस तरह से शुरुआत की जाए?
2: जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं या प्राथमिक चिकित्सा है
1: जी।
2: ये निर्भर करती है कि दुर्घटना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप घर की बात करें कि घर में कोई बुजुर्ग इंसान अगर बाथरूम में गिर गए
1: जी।
2: तो सबसे ज्यादा रिस्क इस बात की होती कि कहीं उनकी कूल्हे की हड्डी ना टूट गई हो। ऐसे में वहां से सबसे पहले उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पे लाके और एक फ्लैट सरफेस पे, यानी एक नरम गद्दे की जगह एक हार्ड सरफेस पे उनको लिटाया जाए और फिर ये समझा जाए कि उनको कहाँ दर्द हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी होती कि क्या वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, किसी पार्ट से चोट लग के वहाँ से कोई खून तो नहीं निकल रहा। अगर वो बेहोश हो गए तो वो बता नहीं पाएंगे, तो वो हमें देखना जरूरी है। और जैसा कि डॉक्टर तेज प्रकाश ने अभी बताया कि हमें एम्बुलेंस के लिए या मेडिकल सुविधा उपलब्ध करने के लिए सबसे पहले कॉल कर देना चाहिए कि जब तक एम्बुलेंस आएगी या जब तक मेडिकल सर्विसेज आएंगी तब तक हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें वाइटल देखना चाहिए कि उनकी नब्ज चल रही है कि नहीं, उनकी सांस आ रही है कि नहीं, और वो होश में है कि नहीं। अगर ये तीनों सुरक्षित हैं, यानी उनकी नब्ज भी मिल रही है, उनको सांस भी आ रही है और वो शायद बेहोश नहीं है, तो हम ज़्यादा सुरक्षित स्थिति में हैं। अगर मान लीजिए वो बेहोश हो चुके हैं तो सबसे पहले ध्यान रखने की चीज़ है कि उनको कुछ खिलाने या पिलाने का प्रयास हम ना करें
1: जी।
2: और उनकी सांस

0: हम देख सकते हैं कि उनकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, नाक के पास उंगली ले जाके हम पता कर सकते हैं कि हवा आ रही है नहीं आ रही है। अगर उनकी गर्दन टेढ़ी है तो हम उसको जरा सीधी करने का प्रयास करें ताकि सांस की नली खुले और उनको सांस आती रहे।
1: जी
0: और ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई जिसमें बर्न हो गया, बर्न हो गया, बच्चा है वो खेल रहा था, किचन में पहुंच गया, उसकी हाथ में आग लग गई। अब वो आग लगने से वो झुलस सा गया है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम ये होता है कि हम उसको नॉर्मल वाटर, जो टैप में पानी आता है, जो नल में पानी आता है, उसके नीचे हाथ रख दें, लेकिन रगड़े ना। क्यों ना रगड़ें? क्योंकि रगड़ने से उसकी जो जली हुई स्किन है वो उतर जाएगी, वो बहुत हानिकारक होगा। सिर्फ ठंडे पानी में, नॉर्मल ठंडे पानी में, बर्फ लगाने की जरूरत नहीं है, उसको साफ कर दें और उसके बाद हाथ को खुला रखें। अब उसमें स्थिति है कि अगर हमारे पास घर में कोई ऐसी क्रीम है, जैसे कॉमनली हम कहते हैं कि फर्स्ट एड किट में किट के अंदर सिल्वर सल्फा डाइजिन ऑइंटमेंट होती है, वो लगा दिया जाए। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो उसको उस हालत में ही रख के और हमें डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना है, मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत ले जाना है। इसी तरह से एक और दुर्घटना होती है घरों के अंदर कि करंट लग गया, कोई लाइव वायर था जिसकी वजह से करंट लग गया। करंट लगने की स्थिति में जो सबसे पहला काम है, जो सबसे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि हम जल्दी से उस इंसान को पकड़ के अलग करना चाहते हैं, ये हम ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी करंट से चिपका हुआ है। हम अगर उसको छूने जाएंगे तो वो करंट हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि जिस वायर से और वो करंट आ रहा है, किसी लकड़ी के टुकड़े से या जो ऐसी कोई भी चीज़ प्लास्टिक हो जिसमें से करंट पास नहीं करता, उसकी मदद से पहले हम उस सोर्स को हटाएं जो जो उसको इलेक्ट्रिक्यूशन कर रहा है। अगर वो हम हटाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अब हम मरीज के पास जाके देख सकते हैं कि उसकी हृदय की गति तो नहीं रुक गई है या उसको वो बेहोश तो नहीं हो गए हैं, बाकी का इलाज उसके बाद शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरह की कौन सी इमरजेंसी है इस पे निर्भर करेगा कि पहला एक्शन क्या लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा, कोई भी दुर्घटना आपके सामने घटती है घबराइए मत, संयम से काम लीजिए और ध्यान रखिए कि मरीज की हम सबसे अच्छी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको सुरक्षित स्थान पर ले आए, उसके आसपास भीड़ ना इकट्ठी होने दें और फिर उसको जो जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है उसमें जो फर्स्ट एड दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, वो हम शुरू करें और एम्बुलेंस बुलाने की व्यवस्था तुरंत करें।
1: जी डॉक्टर अरुण सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बिल्कुल जो है विस्तार से आपने बता दिया। अब जो है समर स्ट्रोक भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या इसमें भी यही प्राथमिक उपचार होगा या कुछ डिफरेंट होगा?
0: नहीं, मैं इसमें दो बातें बोलना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि समर स्ट्रोक यानी हीट वेव से जो स्ट्रोक होता है उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जैसे सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जाते हैं कि देखिए अभी गर्मी की लहर हो रही है, अभी हीट वेव है, अब लू का प्रकोप चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम पहले सावधानी कहते हैं कि अगर जरूरी नहीं है तो आप बाहर ना जाएं, गर्मी से अपने आप को बचाएं। दूसरी चीज़ है कि अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को निश्चित रखें, आप डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी से पानी कम ना होने दें। इसलिए आपको अगर बाहर जाना भी है तो आप फ्रिक्वेंटली समय समय पर थोड़े थोड़े मात्रा में पानी पीते रहें। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए इन सब के बावजूद भी हीट स्ट्रोक होता है तो उसके लक्षण को पहचानिए। लक्षण है कि आपके जिसको हीट स्ट्रोक होगा उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 104 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर हो सकता है और उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो सबसे पहले उस इंसान को उस गर्मी की स्थिति से लाके एक छांव वाली जगह में, एक ठंडी जगह पे लिटाएं। अगर वो होश में है तो उनको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, अगर वो होश में नहीं है तो सबसे पहले उनको पानी मत पिलाइए, क्योंकि जो बेहोश है उसको पानी पिलाने का अगर हम प्रयास करेंगे या कुछ खिलाने का प्रयास करेंगे तो सांस की नली में जा सकता है। इसलिए बेहोश इंसान को हम ये ना करें, लेकिन उसके आसपास हवा हो, ठंडक हो, छांव हो, ये व्यवस्था हम जरूर करें और उसके बाद एम्बुलेंस आते ही उनको हॉस्पिटल ले जाएं। ये समर स्ट्रोक में बहुत जरूरी। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा मेरे श्रोताओं के लिए कि आप ये दुर्घटना ना होने दें, ये जागरूकता रखें, उनको पानी पिलाएं, उनको और खास करके दो उम्र के वर्ग में बच्चों को और बुजुर्गों को ऑलवेज इस बात के लिए मना करें कि वो गर्मी की स्थिति में और लू की स्थिति में बाहर जाने से बचें जितना प्रैक्टिकली संभव हो।
1: बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया भी कि पानी पिलाना चाहिए नहीं। अभी हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार सर।

0: जो रोड के किनारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, इन लोगों को पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? जैसे कोई गिर गया है तो बेहोश हो जाता है, उसे पानी पिलाना चाहिए कि नहीं, जानना चाहते हैं ये।
1: तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये है कि पानी पिलाने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई उससे बेनिफिट नहीं होगी, लेकिन उससे क्या हार्म हो सकता है ये जानना
0: जी,
1: बहुत
0: बहुत
1: ज़रूरी है।
0: महत्वपूर्ण है जी।
1: अगर वो व्यक्ति बेहोशी के हालत में है, इवन आधे बेहोश हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसका जो होश है उतना नहीं है, कम है, तो वैसी स्थिति में अगर देंगे और वो पानी जो है वो सांस की नली में चली गई, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे मरीज, ऐसे लोग जिनके जिनको दुर्घटना हुआ हो, उसको ना कुछ पिलाएं ना कुछ खिलाएं,
0: जी
1: और बेहतर हो कि उसको बिठा के ना रखें, लिटा के रखें। सो बहुत बार हमने देखा है कि कोई गिर गया हो प्रार्थना में, जैसे बच्चे गिर जाते हैं और उसको फिर हम बिठाते हैं, ऑफिस में कभी कोई गिर गया उसको बिठाते, बिठाना नहीं चाहिए, हमें उसको लिटा के रखना चाहिए। तो सेफ प्लेस पे, जहाँ पे आपको लगता है कि ये प्लेस अच्छा है, वहाँ पे लिटा के उसको रखिए और मदद के लिए आगे कॉल करिए
0: जी
1: नेक्स्ट स्टेप में।
0: तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, आगे भी ये सवाल जवाब जारी रहेंगे और समाधान भी जारी रहेंगे। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ अनुराधा और आज हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आज के विषय में विस्तार से। आप हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और हमारे दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं आपसे बहुत सारी बातें अभी जानने को है। तो सबसे पहले मेरा अब सवाल है ब्रेक से वापस आने के बाद कि गोल्डन आर क्या होता है और गंभीर चिकित्सा में क्या है अलग अलग केसेस में ये।
2: ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि समय, इमरजेंसी में समय का सारा खेल है। अगर गोल्डन आवर की बात करूं तो ये चोटग्रस्त मरीजों में पहली बार इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट ढंग से बताया गया कि अगर चोट लगने से एक घंटे के अंदर अगर उसकी डेफिनेटिव केयर या मैं कहते हैं कि मेन केयर, उसकी मेडिकल केयर स्टार्ट हो जाए तो बचने की या आउटकम्स के अच्छे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ चोट तक या ट्रॉमा तक लिमिटेड नहीं है। अगर हार्ट अटैक के मरीजों को हम देखें तो हम लोग कहते हैं कि 30 मिनट के अंदर में, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अगर 120 मिनट या 2 घंटे के अंदर में हो जाए किसी की, तो ये पहले जैसा ही काम करेगा, इसका शरीर, इनका स्वास्थ्य पहले जैसा वापिस आ सकता है। सिमिलरली स्ट्रोक में जो लकवा मारना जिसको कहते हैं, उसमें भी समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। दमे के मरीज में किसी को दमा की इमरजेंसी आ गई, सांस उखड़ रहा है, उसमें भी है। किसी का हार्ट चलना बंद हो जाए उसमें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि हर मिनट अगर छाती का दबाव या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट चलने बंद होने में अगर हम उसको मदद ना पहुंचाएं तो हर मिनट बचने की संभावना 10% लगभग घट जाती है, यानी कि 10-12 मिनट होते होते उसका गेम खत्म हो जाएगा। इसलिए समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सब इमरजेंसियों को हम लोग कहते हैं टाइम सेंसिटिव इमरजेंसी, कि समय से इलाज बहुत जरूरी है इसमें।
1: तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप समय से सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और बचा लेते हैं किसी एक की भी जान, तो बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर साहब, अगर बात होती है तो हमारे पास देखिए एक सवाल भी आ चुका है SMS हमारे पास KD त्रिपाठी जी का रांची से आया हुआ है। लिख रहे हैं कि मैं 79 ईयर ओल्ड हूँ और एम्बुलेंस नंबर क्या 108 है, ये जानना चाहते हैं। हालांकि आपने अभी बताया है झारखंड रांची से ये सवाल आया है। और मेरा भी एक सवाल है कि जब जैसे टीम वगैरह क्या भेजी जाती है आपकी ओर से, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स लोग जैसे कि अभी इनका सवाल है कंफ्यूज ये हो रहे हैं, पहले इनका जवाब दे दें फिर हम अपना सवाल करेंगे।
2: जरूर जरूर, देखिए एम्बुलेंस सर्विसेज सरकार की तरफ से और प्राइवेट लोगों की तरफ से भी उपलब्ध है। और पिछले दशकों में हमने देखा और सरकार ने भी यह पाया कि अलग अलग एम्बुलेंस के नंबर के होने की वजह से लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो सुविधा होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण से ही केंद्रीय सरकार ने एक नंबर 112 नंबर जारी किया है और लगभग अब धीरे धीरे करके सारे स्टेट अब इस नंबर को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो ये एम्बुलेंस की जरूरत हो तो उस पर कनेक्ट कर देंगे, या कोई और आवश्यकता हो तो उस पर कनेक्ट कर देंगे
1: जी।
2: दूसरा एक और है कि कोई आपात स्थिति हो तो कहीं किसी किसी राज्यों में लोग 108 जो एम्बुलेंस सर्विस है उस पर कॉल करते हैं। तो थोड़ी मैं कहूंगा दोनों बात कि 112 उपलब्ध है, जरूर सुविधा उठाएं। अगर ना उपलब्ध हो आज ही जानकारी ले कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है
1: जी। बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमसे, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। आप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना।
3: नमस्ते मैडम जी, मैं मुजफ्फर मलेरकोटला पंजाब से बोल रहा हूँ
1: जी। स्वागत है, नाम बता दिया आपने, अब बताएं कि सवाल क्या है, दोनों विशेषज्ञ सुन रहे हैं आपको।
3: मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक बार रास्ता चल रहा था अपने गाड़ी पे
1: जी,
3: तो कुछ मतलब एक बंदा ना एक्सीडेंट होकर के रोड पे गिरा हुआ था, ठीक है
1: जी।
3: तो वहाँ पे ना कोई उसको उठाने वाला नहीं था, ठीक है। तो मैंने देखा तो मैं सोचा नहीं इसका मदद मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको ना उठा करके अपने गाड़ी में, एक बंदे को मैंने बोला भाई ऐसा करो, इसको ना मेरे गाड़ी में बैठाओ और मेरे साथ चलो
1: जी।
3: इसको हॉस्पिटल तक

0: लेके जाना है, जबकि उस टाइम एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस का फोन नहीं लग रहा था। ठीक है, तो मैं उसको हॉस्पिटल की कदर तो मैंने लेके गया, ठीक है, उस बेचारे को। और वहाँ जाने के बाद जो है ना, हॉस्पिटल वाला बोलता है जो भाई इसका ना पुलिस केस बनेगा, ठीक है, जब तक पुलिस नहीं आएगा मैं इसको एडमिट नहीं करूंगा अपने हॉस्पिटल में।
1: ठीक है,
0: तो मेरा कहने का मतलब, जैसे पुलिस आया तो मेरे से ना पूछताछ बहुत कुछ किया, ठीक है, और मेरे से जो है ना बहुत आना जाना कराया, जो कैसे हुआ, तुम कहाँ थे, कैसे, तो यार मैं उसका मदद किया, तो मैं उसको ये थ्रू दिखा रहा जो मुझे
1: जी। देखिए सर ने, डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले इस विषय की चर्चा की थी, मुझे लगता है कि आप उस समय कार्यक्रम सुन रहे थे कि नहीं। सर एक बात इनको शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या रूल, क्या नियम अब बन चुके हैं।
2: नियम जिसको हम लोग गुड सैमरिटन लॉ कहते हैं, एक तो बड़ा अच्छा सवाल है और ये झिझक आज भी लोगों के बीच में, तो आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने इस सवाल को दोबारा उठाया है। सो गुड सैमरिटन लॉ ये कहता है कि जो भी इस तरीके के दुर्घटना में शिकार व्यक्ति की मदद करता है, उसे अस्पताल ना नाम पूछेगा, ना मरीज के इलाज के लिए कोई फीस या किसी और भी चीज की डिमांड कर सकता है। दूसरा, ये अस्पताल की जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुलिस को बुलाना है तो बुलाए, मेडिको लीगल कार्यक्रम जो भी उसके लिए करना है वो करे, और किसी भी तरीके से जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने, जैसे आपने बड़ा अच्छा मदद किया है, तो कोई हरासमेंट ना करे। सरकार की नियम यही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंच सके।
1: डॉक्टर साहब अब बात कर लेते हैं कि ट्रॉमा केवल शारीरिक ही माना जाता है, ऐसा है क्या? मानसिक स्थिति में भी ट्रॉमा हो सकता है?
2: देखिए ट्रॉमा तो दोनों तरीके से डिफाइन करते हैं, एक फिजिकल ट्रॉमा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि शरीर में चोट किसी तरीके की लगी और कोई डैमेज हुआ उससे
1: जी,
2: लेकिन चोट लगने के बाद भी बहुत तरीके की मानसिक परेशानियां होती हैं। एक तो जिसको कि हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि वो जो स्थिति थी ट्रॉमा की जिसमें एक्सीडेंट या कुछ हुआ था उसकी यादें आती रहती है और साइकोलॉजिकल बड़ा स्ट्रेस रहता है, तो इस पे भी बहुत गंभीरता से चर्चाएं चल रही हैं और बहुत सारे पहलू हैं जिसपे लोग ध्यान दे रहे हैं कि जब ये लोग आते हैं चोटग्रस्त तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए आने वाले समय में। इसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या अदर डॉक्टर्स भी हैं, और मैं चाहूंगा कि सर भी इस पे थोड़ा और प्रकाश डालें।
1: जी बिल्कुल
3: जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मानसिक आपातकालीन स्थिति भी होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत तनावग्रस्त है या डिप्रेशन में है और उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, यानी आत्महत्या की स्थिति पैदा हो रही है, वो करना चाह रहे हैं, ये अपने आप में एक इमरजेंसी है। अगर कोई भी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आता है और रिकॉग्नाइज करता है कि ये व्यक्ति अभी ऐसा कोई अनचाहा कदम ले सकता है, तो उसको रोकने के लिए प्रयास करना भी एक इमरजेंसी है, एक इंसान को जिंदगी में वापस लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये तो मानसिक रूप से, दूसरा आपने भी देखा होगा और कई बार अखबार में भी हम पढ़ते हैं कि कोई पुल के ऊपर गया और पुल पर चढ़ के खड़ा हो गया कि अब वो आत्महत्या करने के लिए, कूदने के लिए तैयार है। ऐसे में राहगीर जो है, जो उसको देखते हैं, वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो ये मानसिक इमरजेंसी भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मान लीजिए आज रिजल्ट निकला है और किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत खराब आया, तो हमें ये एक एंटिसिपेशन है कि जिस बच्चे का रिजल्ट खराब आया कहीं वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त तो नहीं हो गया, उस चीज को रोकना, उसके लिए तैयार करना। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से परीक्षा से पहले बच्चों से कहते हैं, वही चीज़ हर आदमी को करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी तनाव की स्थिति है, किसी के घर में कोई दुर्घटना घट गई, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की मौत हो गई, अचानक आकस्मिक मौत हो गई, उसका जो मानसिक प्रभाव घर के बाकी लोगों पर पड़ेगा उसको समझना और उन लोगों को उस मानसिक तनाव की स्थिति से निकालना आगे की दुर्घटनाओं से बचा सकता है, इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
1: जी,
2: मैं एक जोड़ना चाहूंगा इसमें, जो बड़ा अच्छा सर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी हमेशा बच्चों के साथ बातें करते हैं एग्जाम के पहले, तो मेरा आपके माध्यम से सारे स्कूल और पंचायत से रिक्वेस्ट होगा कि क्यों ना हम अपने पंचायत के लेवल पे या स्कूल के लेवल पे परीक्षा के उपरांत एक ऐसे स्टूडेंट से मिले और उनको बताएं और इन स्थितियों को कैसे टालें,
1: जी।
2: इस पे भी मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए दोनों लेवल पे, पंचायत और शिक्षकों के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, तो ये मेरा एक सबमिशन है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आप लोगों का। और ये बात यहाँ पर देखने को आती है कि अगर बच्चा बचपन से ही स्ट्रांग होगा, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा जीवन उसको मिलेगा। और उसके लिए जो आपने बताया है कि चर्चा

0: होनी ही चाहिए और उस पर थोड़ा सा गंभीरता से लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत लाइटली लिया जाता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके साथ कैसा भी अगर बिहेव किया जाता है तो थोड़ा लाइटली लोग लेते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं आहत होता है। इसलिए उसको संभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा कहा जाता है कि एक कच्चा घड़ा होता है, उसको जैसा ढालेंगे वैसा वो बनेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आ चुका है रमेश कुमार सिंह जी का, न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जब हम एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो फिर उन्होंने इसी समस्या का जिक्र किया है जिसका अभी हम जवाब दे चुके हैं। तो रमेश जी, उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा, और आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल अभी हमारे पास बाकी हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि ट्रॉमा सेंटर क्या है, ये सामान्य अस्पताल से क्या कुछ अलग होता है, किस तरह की सुविधाएं होती हैं इसमें?
1: चूंकि आपने अभी बात करी कि गोल्डन आवर की बात है, तो सारी चीज़ समय से व्यवस्थित तौर पे होनी चाहिए एक मरीज के इलाज के लिए। तो जैसे हार्ट के सेंटर्स बनने शुरू हुए,

0: कुमार सिंह जी का न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जब हम एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो फिर उन्होंने इसी समस्या का जिक्र किया है जिसका अभी हम जवाब दे चुके हैं। तो रमेश जी, उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा और आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल अभी हमारे पास बाकी हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि ट्रॉमा सेंटर क्या है, ये सामान्य अस्पताल से क्या कुछ अलग होता है, किस तरह की सुविधाएं होती हैं इसमें?
1: चूंकि आपने अभी बात करी कि गोल्डन आवर की बात है, तो सारी चीज़ समय से व्यवस्थित तौर पे होनी चाहिए एक
0: जी
1: मरीज के इलाज के लिए। तो जैसे हार्ट के सेंटर्स बनने शुरू हुए, तो इस आपात स्थिति में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत पड़ती है हर जान को बचाने के लिए। तो शुरुआती जो सेवाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी सेवा। उसके बाद जो किसी एक स्पेसिफिक तरीके की इंजुरी है, जैसे सर का चोट है, तो आपको फिर हेड इंजरी को मैनेज करने के लिए आगे की व्यवस्थाएं भी चाहिए। किसी को फ्रैक्चर है, स्पाइन की इंजरी है, तो उसको आगे की व्यवस्थाएं चाहिए। किसी को आईसीयू की जरूरत है, तो इमरजेंसी में इलाज होने के बाद आईसीयू में उसको केयर चाहिए। तो ये पूरी व्यवस्थाओं को एक जगह व्यवस्थित करने का जो काम किया गया है, इस तरीके के यूनिट्स या सेंटर्स बना के किया गया है। अभी हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट भी पास किया है इसके लिए कि जो सेकेंडरी लेवल के हमारे जिला अस्पताल हैं उसमें इमरजेंसी और ट्रॉमा की सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मेडिकल कॉलेज के लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे तो ये चल रही थी, लेकिन अब इसको डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल पे भी कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए भी बड़ी सारी योजनाएं और कार्यबद्ध तरीके से कैसे इसको आगे ले जाए।
0: जी
1: तो ये एक तरीके से व्यवस्थित पूरा सेटअप है जिसमें कि कोई भी ट्रॉमा का मरीज आए, किसी भी तरीके के चोट का, उसका समुचित एंड समग्र इलाज हो पाए।
0: हो पाएगा।
1: सो जैसा मैंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में एक जैसे ही आप कोई मरीज आता है, तो एक तो रिसेप्शन पे जो भी अराइवल एरिया या गेट के पास जो लोग हों खड़े, उनको इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि इस मरीज को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से एम्बुलेंस से उतार के अंदर लेके जाएं।
0: जी
1: जब अंदर जैसे ही जाते हैं, तो हमारी नर्सेस एक आइडेंटिफाई करने का तरीका, जिसको हम कहते हैं कि सीरियस कौन है और कौन कम सीरियस है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में ट्रायाज कहते हैं,
0: जी
1: कैटेगरी में बांटना, ताकि जो सीरियस है उसको जल्दी इलाज मिले और जो थोड़ा इंतजार कर सकता है वो
0: राइट
1: प्रायोरिटाइज कर ले हम। तो ट्राइजिंग हो गई, ट्राइज होने के बाद जान या लिम, या मतलब हम कहते हैं कि हाथ पैर में अगर कोई ऐसा हो, तो इसको बचाने के लिए जो चाहिए उसको सबसे जल्दी आपको देखना पड़ेगा। इसी को जो व्यवस्थित तौर पे हम कहते हैं एबीसीडी वे में, एक डॉक्टर की भाषा में हम कहे तो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिससिटेशन कहना करना, या जान बचाने की जो सारी प्रक्रियाएं होती है उसको करना। इसको करने के बाद हम जान पे खतरा तो टाल दिया हमने, अब हमें देखना है कि चोटग्रस्त कौन कौन सा भाग है, कौन सा अंग है, उसके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: तो अब यहाँ पे जांचों का समय आता है, थोड़े जांचें हम करते हैं, फिर अन्य विभाग के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं साथ में कि इसका फ्रैक्चर है, तो हमने इमरजेंसी में केयर, ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था, वो हमने रोक दिया है, फ्रैक्चर का एक्सरे हो गया है, फ्रैक्चर का मूवमेंट हमने रोक दिया है, ये सारे चीज हमने देख लिए, अब आप इसको आगे का इलाज करिए। तो कहेंगे ठीक है, इसको हम भर्ती करके ऑपरेशन करेंगे, या हो सकता है कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम देखभाल करके छुट्टी करेंगे। तो इस तरीके से पूरा व्यवस्थित तौर पे सारे सीक्वेंस में इसका इलाज चलता है ट्रॉमा सेंटर में।
0: आगे भी आपसे अभी जानेंगे कि टेस्ट किस तरह के होते हैं और क्या क्या जरूरी होते हैं, करा ही लेने चाहिए, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
2: और दोनों डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से।
0: जी जी सर,
2: मेरे को ये पूछना था कि जैसे नॉर्मल चक्कर आ जाते हैं कमजोरी से या किसी कारण से, बच्चों को या किसी को भी घर में, तो उसमें जैसा सर ने बोला कि उसमें क्या उनको पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए,
0: क्या कहेंगे सर बताएं? अरुण सर
3: जी,
0: क्या कहना चाहेंगे?
3: इस प्रश्न को पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आम समस्या होती है, किसी भी इंसान को अगर चक्कर आ गए और वो बेहोश होने लगे, तो उसे सबसे पहले लिटा दीजिए एक साफ सुथरी जगह पे, खुली जगह पे, घर में, घर के अंदर भी लिटा दीजिए। और आम तौर पे ये चक्कर आना होता है तो हम लिटाने के बाद कहते हैं कि उनके पैर आप थोड़े से पकड़ के दोनों पैर ऊपर कर दीजिए। आमतौर पर क्या होता है कि लंबे समय तक खड़े रहने से या कमजोरी की वजह से, और रक्त का जो प्रभाव है वो प्रभाव पैरों की तरफ हो जाता है, इससे मस्तिष्क में रक्त नहीं पहुंच पाता, इसलिए चक्कर खा के कोई गिर जाता है। तो सबसे पहला काम यही करें कि उसको लिटा दें, ये देखें कि उसकी सांस ठीक हो रही है, यानी उसकी गर्दन मुड़ी हुई नहीं है, गर्दन सीधी होनी चाहिए और दोनों पैरों

0: को हम थोड़ा सा धीरे से ऊपर उठा दें, तो रक्त का प्रवाह अब जब फिर से हृदय और ब्रेन की तरफ होने लगेगा तो उनको होश आ जाएगा। अगर इसके बाद भी उस इंसान को होश नहीं आता है तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये समस्या किसी और पीछे की किसी बीमारी की वजह से हुई है, तो उसमें ये आपातकालीन स्थिति बन सकती है। और अगर हम देखें कि उसकी सांस आ जा रही है, उसकी नब्ज चल रही है, तो अब सबसे पहले उसे हम निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने की व्यवस्था करें। और अगर वो बेहोश हैं, उनको होश नहीं है, तो उनको पानी पिलाने का या कुछ भी खिलाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर वो होश में है, बात कर सकते हैं, तो बैठा के आप उनको पानी पिला सकते हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि वो इस स्थिति में है या नहीं है, और तुरंत मेडिकल सुविधा लेने के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर या निकटतम डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, ये जरूरी होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर,
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी अभी
2: मेरा
1: आपका
2: पूछना है,
1: हाँ जी बताएं।
2: जी मेरा पूछना है कि जब किसी इंसान पर एसिड अटैक हो तो हम लोगों को क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं।
3: ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है गौतम जी, कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एसिड अटैक हो तो क्या करना चाहिए। एक तो ये है कि किसी भी तरीके का, जैसे एक लिक्विड हो गया या किसी भी तरीके का ऐसा हो, तो पहले तो उसका एक्सपोजर को या उसके असर को कैसे कम कर सकें। तो हम लोग कहते हैं कि और एसिड उस पर ना गिरे, पहले तो हम ये देखें कि एसिड कैसे कम हो सकता है। दूसरा बात है कि आप उसको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाना पड़ेगा। इस बीच में आप इतना कर सकते हैं कि उसको, जैसे सर ने पहले बर्न के केसेस में जैसे जो प्रिकॉशन हम जले हुए मरीज के लिए लेते हैं, उस तरीके की प्रिकॉशन इसमें भी लेनी पड़ेगी आपको। और आप अननेसेसरी उसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाओं को अवेल करें। और इसको आप वेट नहीं कर सकते हैं, अक्सर देखा गया है कि चेहरे पे एसिड अटैक कॉमन होते हैं, जिसमें फिर सांस की नली में भी वो एसिड जाने की समस्या, सांस लेने की समस्या, ये सारी समस्याएं बहुत तेजी से अग्रसर होती है। तो इसको मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी हो सके उस पे हम लेके जाएं।
1: जी तो यहाँ पर आपने इनका मार्गदर्शन कर दिया, आगे बढ़ते हैं और फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और हम चर्चा कर रहे हैं आज किस तरह की इमरजेंसीज होती हैं और किस तरह से आपको सतर्कता बरतनी है। लगातार इस विषय पर हमारे दो विशेषज्ञ आपको सलाह दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। हम मैसेज यहाँ पर देखना चाहेंगे। हमारे पास ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता जी, बबीता रानी गुप्ता जी का मैसेज आया हुआ है। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, विषय भी बहुत अच्छा है। आज आपातकालीन पर बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफी जानकारी मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर गुप्ता जी और बबीता जी। अगर आप कोई सवाल लिखते तो और भी अच्छा लगता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है और बारी बारी से मैं जानना चाहूंगी कि आप उपचार बताएं। और हीट प्रॉब्लम, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये देखा जाता है कि लोग आमतौर पर मान लेते हैं कि ये गैस की समस्या है, लेकिन कैसे जाना जाए कि ये हार्ट की ही प्रॉब्लम है?
1: तो देखिए, अक्सर ये देखा जा रहा है कि 35 साल या उससे ऊपर, पहले तो और ज़्यादा इस उम्र में होता था, लेकिन आजकल थोड़े यंग एज में भी देखे जा रहे हैं कि सीने में बाई तरफ दर्द, या कहें कि सेंट्रल चेस्ट में बीच में भी दर्द
0: जी।
1: और अक्सर ये बीच का दर्द होता है, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कराता है हमें कि ये गैस है
0: जी।
1: तो पहले तो कोई भी ऐसा दर्द जो सीने में महसूस हो रहा हो, भारीपन लग रहा हो, घबराहट महसूस हो रही हो, जबड़े की तरफ जा रहा हो या बाई हाथ की तरफ जा रहा हो, पसीने आ रहे हो और ये दर्द आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है और ये 20 मिनट से ऊपर खींचता चला जा रहा है, तो ये लक्षण है, आप मान के चले कि ये कुछ भी हो सकता है, तो घबराने के बजाय इसके बारे में सोचे कि इस पे आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और इसको गैस समझ के इग्नोर ना करें पहली बार।
0: बिल्कुल।
1: तो अब आपको आगे जो भी पास में ऐसी सुविधा है जहाँ पे ECG हो सकता है और डॉक्टर की सुविधा मिल सकती है, वहाँ के लिए आपको आगे जाना चाहिए
0: जी। अरुण सर से मैं भी जानना चाहूंगी कि बचाव किस तरह से हो सकता है इस स्थिति में।
2: जी, डॉक्टर तेज प्रकाश ने बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि गैस है या हार्ट अटैक है, और ये हमें समझना होगा कि इसका पूर्वानुमान होना चाहिए। पूर्वानुमान कैसे होता है? अगर घर में एक हाइपरटेंशन के मरीज हैं या उनके उनकी पूरी जांच हो चुकी है और पता है कि इनका जो हार्ट है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनके हार्ट अटैक होने की संभावना है, ऐसे इंसान में अगर इस तरह के लक्षण आते हैं, जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि सीने में सेंट्रल पार्ट में दर्द होता है या बाईं तरफ दर्द होता है, तो शुरू में हमें लगता है कि अच्छा, हो सकता है कि हमें घबराहट हो रही है, पे कुछ ज़्यादा खा लिया होगा या कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए होगा, इससे हम बचें। और ऐसे लोगों में, खास करके जिनको पहले से इस तरह की हार्ट की बीमारियां मौजूद हैं, उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो ये पूर्वानुमान रखना बहुत ज़रूरी है कि खास करके बुजुर्गों को, हाइपरटेंशन के मरीजों को और जिनको कार्डियक बीमारी पहले से है, उसमें अगर ये लक्षण आते हैं तो हम ये इग्नोर ना करें कि ये गैस की हो सकती है, तुरंत उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें या उनको हॉस्पिटल ले जाएं। बहुत अच्छी बात होगी कि हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगे कि वो कुछ नहीं था, गैस थी, लेकिन वो जो रिस्क थी कि अगर हार्ट अटैक होता तो हमने काश कोई सही फैसला ले दिया होता, हम उस गिल्ट से बच पाएंगे। मैं इसमें अनुराधा जी जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो इमरजेंसी बनते हैं, वो हमें अगर पहले से पता है, अगर हमारे घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज है, तो डायबिटीज़ के मरीज में देखिए दो चीज़ें होती हैं, अधिक शुगर होने की वजह से एक मेडिकल टर्म होता है कीटोएसिडोसिस, जिसमें भी इंसान बेहोश हो जाता है, या डायबिटीज़ के मरीज ने अपनी डायबिटीज़ की शुगर कम करने की दवाई खा ली लेकिन उसके बाद खाना नहीं खाया, तो वो

0: ग्लाइसीमिया की स्थिति होती है। इन दोनों स्थिति में मरीज जो है धीरे धीरे बेहोशी की तरफ बढ़ता है और बेहोश हो जाता है। तो जब घर में एक डायबिटीज का मरीज है तो इस बात की सावधानी अगर हम रखें कि भाई वो ज़्यादा देर तक भूखा ना रहे और वो कभी गलती से भी बहुत ज़्यादा शुगर या शुगर वाली चीज़ें ना खा ले, दोनों ही स्थिति आपातकालीन स्थिति की तरफ ले जाएंगी। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, जिसे हम गाँव में देहात में अभी भी मिर्गी के दौरे के नाम से जानते हैं। उसमें भी ये स्थिति होती कि जिन लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी है उनसे कहा जाता है कि आप लगातार अपनी दवाइयाँ खाएंगे, कोई भी दवाई मिस नहीं करेंगे। अगर किसी वजह से दवाई मिस हो गई तो ये रिस्क रहती है कि उनको मिर्गी का दौरा हो सकता है, उनको एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। तो ये सावधानी रखना कि दवाई समय पर दी जा रही है, उचित मात्रा में दी जा रही है, दवाई कभी मिस नहीं हो रही है। और ऐसे व्यक्ति में अगर पहले के लक्षण आते हैं कि ऐसा क्या होता है कि एक जी घबराने लगता है, उनको चक्कर से आते हैं, उसके बाद वो पूरा एपिलेप्सी का एक अटैक होता है, तो वो तुरंत समझते ही उनको लिटा देना, उनकी गर्दन सीधी करना और ये ध्यान रखना कि कहीं जो जीभ है वो उलट ना जाए, जो टांग है वो पीछे की तरफ ना चली जाए। तो उसमें आमतौर पर हम कहते हैं कि देखिए अगर वो बेहोश होने लगा है, उसको कन्वल्सन्स हो रहे हैं, तो किसी तरह से उसके जबड़े को खोल के उसके अंदर एक प्लास्टिक की चम्मच या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दें कि उनकी जीभ उलट ना जाए, ताकि उनको फर्दर किसी डैमेज से या दुर्घटना से बचाया जा सके। तो जिन घरों में ऐसे बीमार होते हैं वो डॉक्टर से ज़रूर ये सलाह लें कि डॉक्टर साहब इस बीमारी में कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, कौन सी आपातकालीन स्थिति घर में हो सकती है और उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से मरीज के परिवारजनों को अपनी तरफ से और ये प्रश्न ज़रूर पूछना चाहिए ताकि वो उस चीज़ के लिए तैयार रह पाएँ। जो जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं उनमें ये जो सावधानी है बहुत काम आएगी किसी दुर्घटना से बचने के, या उस मरीज के साथ कोई भी मतलब अनएक्सपेक्टेड घटना ना घट जाए, उसमें ये बहुत योगदान रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते
2: हैं? एक जस्ट मैं ऐड करना चाह रहा था, जो मिर्गी के दौरों के बारे में बताए, बड़े होते हैं लोगों के बीच में होते हैं और अक्सर देखा गया है कि ये मिर्गी के दौरे के दौरान इनको गिरने से, या जैसे बिस्तर पे मिर्गी का दौरा पड़ा या बैठे बैठे पड़ा, तो ये गिरने के बाद जो चोट की स्थिति होती है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो मिर्गी के दौरे वाले में ये जरूर ख्याल रखें कि अगर ऐसी ऊंची जगह पे कहीं है वो और दौरा हो रहा है तो अब गिरने से चोट न लग जाए तो अच्छा है कि फ्लैट सरफेस पे हो रहे हैं। दूसरा कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी काम को करने के लिए तो उसको अवॉइड करिए आप। जैसे बहुत बार लोग टंग को बाइट होने से बचाने के लिए स्टील के चम्मच या किसी चीज़ से करना चाहते हैं, तो आप इसमें ना पड़े, मैं तो यही सलाह दूंगा इसमें ना पड़े आप। ऐसा ना हो कि आप बचाव करने जा रहे हैं या कुछ हेल्प करने जा रहे हैं और ज़्यादा उसकी चोटग्रस्त होने की संभावना है। तो ये दो बातें मैं ऐड करना चाहूँ।
1: बहुत ही यहाँ पर उत्तम चर्चा रही और मुझे लगता है कि समय का तो पता नहीं चला, बहुत सारे सवाल अभी मन में थे और हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे और बहुत सारी बातें, लेकिन समय अब अनुमति नहीं दे रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि श्रोताओं, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको आज का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, और आप हमें बताते रहिए। और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज हमने चर्चा की है, आगे भी कार्यक्रम में लगातार चर्चा बनी रहेगी। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद थे वो थे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे बस इतना कहूंगी कि अब दीजिए इजाजत, अनुराधा को नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: हिमालय की गोद से लेकर
6: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
5: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
6: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
5: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
6: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
5: तो सुनना ना भूलें
6: रेनबो डेस्टिनेशंस
5: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: हां जी, प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो जलंधर, ते तुसी बने हुए हो अपनी दोस्त वंदना दे नाल इस प्रोग्राम दे विच। ते हेलो हेलो करदिया होया अगली कॉल जड़ी है ओ किदी लगी है देख लेने आ एक बारी। हेलो
1: हेलो मैम, सस्रीकाल।
0: सस्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: जगसीर सिंह गिल, पिंड जगतपुर जट्टा सरां तो बोल रहा मैं।
0: जगसीर सिंह गिल, पिंड जगतपुर जट्टा सरां तो है जी। ये किधर नू पैंदा वैसे?
1: मैं फगवाड़े दे कोल ही है।
0: वैसे मैं तुहानू हर वारी पुछ लैनी आ जदों भी तुहाडी कॉल आंदी है, क्योंकि मैनू भुल जांदे आ पिंड।

0: जवाब,
1: बिल्कुल सही जवाब है।
2: दीवा
1: बिल्कुल सही, दीवा जवाब सही है था, तुसी बिल्कुल सही जवाब देता भावे दूसरे गैस थे, पर तुसी बिल्कुल
2: मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा वी धन्नवाद।
1: बहुत वधिया गैस कीता, बहुत बहुत धन्नवाद कॉल करन वास्ते, ते इसे तरह जुड़े रहो, हो सकदा तुहाडी कॉल दोबारा लग जाए ते असीं तुहाडे नाल किसे होर बुझार दा वी जवाब सुनीए।
0: बिल्कुल दोस्तों, ते जी ते दोस्तों हुण तुहाडे को पुछदे आ अगला सवाल, ते अगली बुझारत पुछ लिए, एक सवाल पुछ लिए, मैनूं एक बारी क्लियर करो भागेश्वर।
1: मैं कहना हुण एक सवाल पुछिए।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों वैसे तो चलो ये बुझारत ही है, बट आप एक बार थोड़े तो पूछ लें कि ऐसी केड़ी चीज़ है जो खुद कुछ नहीं खाती पर थानू सब सब कुछ खवादी है।
1: बिल्कुल, सोच लो थोड़ा जहा, ऐसी केड़ी चीज़ है जी आप तो कुछ नहीं खाती पर थानू सब कुछ खवा दें, तो थोड़ा सोचो तो सू कॉल करो 0181 43 174 नंबर से।
0: जी इस दाल सू मैसेंजर के उपर भी जवाब दे सकते हो, तो अभी उड़ीक कर रहे हैं, जल्दी तो जल्दी सू जवाब भेजो।

0: जी हाँ, एक इदां दी कहानी, एक इस तरह के 86 साल के किस तरह के किसान की कहानी, जिन्होंने अपने जड़े जगह दे उन्हां दा जन्म होया ते जिथे उह रहिंदे सीगे उत्थे उन्होंने उस जगह दी पूरी नुहार बदल के रख दित्ती सिर्फ अपनी एक जिद दे नाल। और जिद की जिद ए कि मैं अपनी दुनिया नू, अपने आस पास दे लोकां नू इस तरह का एक माहौल देना कि दुनिया दे विच, मतलब जिथे भी असी रह रहे हां आस पास इदां दा माहौल, ताकि मेरियां आन वालियां जिहड़ियां पीढ़ियां ने ना वह पानी दे लई या फिर कुछ भी इदां दे रिसोर्सिज जिहड़े कि बेसिक रिसोर्सिज ने उन्हां वास्ते तरसन ना। और असी कल ही सिर्फ असी एनवायरमेंट डे मनाया है, और एनवायरमेंट डे मनाने का असली मकसद यही है कि लोगों को इस चीज़ लई अवेयर करना कि दुनिया दे विच असी रह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा वध रही है, ते नाल नाल जड़ियां जगह दे उत्ते हौली हौली कितें हरियाली सी उत्थे तुसी देखिया कॉन्क्रीट दियां बिल्डिंग्स बन गई ने, उत्थे पक्के मकान बन गए ने, ते उत्थे इदां दा कुछ भी नहीं है जड़ा कि सानू नेचर दे कोल या नेचर दे नाल महसूस कराए। तो बस फिर इस तरीके की एक जिद सी उन्हां दी, वो कित्थे दे सीगे, की उन्हां दी जिद सी और उन्होंने की बदलिया, इस बारे विच असी अज गल करांगे प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच। क्योंकि लव यू जिंदगी एक इदां दा प्रोग्राम जिहदे विच असी गल करदे हां जिंदगी दे पॉजिटिव एटीट्यूड दे बारे च, जिंदगी दे इस तरह दे फलसफे दे बारे विच कि असी जिंदगी च की इदां दा करके कामयाब आप भी हो सकते हां। तो ये कई लोग इदां दे, उन्हां दी एग्जाम्पल्स इस प्रोग्राम दे विच मैं जरूर पेश करदी हां, जिन्हां ने आप जिद कीती अपने आप नाल, समाज नाल, ते इस समाज नूं भी बदलिया, और समाज दे नाल नाल बहुत सारियां चीज़ां पुरानियां उन्होंने बदलियां, समाज के रीति रिवाज या फिर समाज के वो पुराने ढर्रे भी बदले उन्होंने। तो इदां दे लोग बंदे ने साडे पूरे दे पूरे सोसाइटी वास्ते एक एग्जाम्पल। फिलहाल शुरुआत करदे हां एक बहुत ही खूबसूरत जे गीत तो, इस गीत नूं सुणदे हां ते नाल नाल इस प्रोग्राम दे विच अगे कंटिन्यू चलांगे। प्रोग्राम लव यू जिंदगी, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी तुहाडा इंतजार कर रही है इस गीत दे उस पार।
1: अरे भाई क्यों उदास है, ऐसा क्या हुआ है, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे साथ मेरी आवाज है और ये गाना है। जो तेरी हंसी उड़ा रहा है, जो कहे तू लायक ही नहीं है, जो तेरी हंसी उड़ा रहा है, जो कहे तू लायक ही नहीं है, तू गिर गिर गिर गिर गिर गिर गिर फिर खड़े होकर, गिर के उठ के गिर के उठ के पैरों पर, गिर गिर गिर फिर खड़े होकर, गिर के उठ के पैरों पर, हारना नसीब में हो फिर भी तू आगे चल, आगे बढ़ते उसी नसीब को बदलता चल, गिर गिर गिर फिर खड़े होकर, गिर के उठ के पैरों पर, हारना नसीब में हो फिर भी तू आगे चल, आगे बढ़ते उसी नसीब को बदलता चल, गिर गिर गिर फिर खड़े होकर।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मेरा एक जिद्दी गुआंडी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मननु तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब दा बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

जी हाँ, राणा राम बिश्नोई जी ने सचमुच गर्दा उड़ा दिया, क्योंकि उन्होंने इदां दा काम किया जड़ा कि एग्जाम्पल बन गया आस पास के लोगों वास्ते। तो कहिंदे जदों हुण एक्सपेंशन हुई पेड़ां दी, तो उस टाइम दे विच कहिंदे जिदा जिदा हुण ग्रीनरी वध रही है उत्थे, तो बर्ड्स भी आने स्टार्ट हो गए ने उत्थे। तो इहदे नाल नाल की होया कि बर्ड्स आने स्टार्ट होए ने, तो होर भी तुहानूं पता है कि अलग अलग तरह का उत्थे एक लाइफ जिहड़ी है, एक नवीं जिदा जीव जंतु जड़े जानवर दा सीगा ही, बट बर्ड्स दे नाल होर भी बहुत वधिया हो गया उत्थे आस पास का माहौल जिहड़ा है। चिड़िया आ गई ने, होर भी अलग अलग तरह के बर्ड्स आते हैं। तो इहदे नाल नाल एक बेनीफिट होर होया कि एग्रीकल्चरल जिहड़ी लैंड है जिहड़ी, उत्थे भी ब्रेक लग गई है मरुथल की, कि वह उधर नूं वधना घट गया, क्योंकि एक इदां दी एक लाइन, एक शील्ड बिछा दी है उन्होंने राणा राम बिश्नोई जी ने पेड़ां की, ताकि जड़ा वो मरुथल है वह उधर का उधर ही रह जाए। वह जड़ा इफेक्ट है वह बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल एरियाज़ दे विच ते एग्रीकल्चरल लैंड्स दे उत्ते ना पवे। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया है अपने आप ही, बिना किसी हैल्प तो, किसी की भी अपने दम दे उत्ते, बिना किसी भी तरीके की हैल्प तो। और जड़ा पानी वो लैके आते सीगे वो जाते सीगे, जिदा मैं तुहानूं दस्सिया कि वो कल्ले जाते सीगे, ते किलोमीटर्स दे विच उन्हां दी जिहड़ी दूरी हुंदी सीगी राजस्थान दे विच, तुहानूं पता है कि एक टाइम दे उत्ते किन्ना ज़्यादा स्ट्रगल सीगा पानी दा भी लैके आने वास्ते। तो वो जदों लैके आते सीगे पानी नूं, ते फिर अपने फ्रेंड दे ट्यूबवैल तों, ते उही जिहड़ा वो छोटे सैपलिंग्स जिहड़े ने, जिहड़े छोटे प्लांट्स ने, उन्हां दे विचों पानी दित्ता जांदा सीगा। और कहिंदे जे पिंड दीआं या फिर घर दीआं कुछ लेडीज़ उन्हां दी हैल्प करदीआं सी ना, ते वो उन्हां नूं अपनी पॉकेट तों पॉकेट मनी भी दिंदे सी। दैट मीनस कि उन्हां दा जिहड़ा मतलब उन्हां दे वेजिस जिहड़ा सारा दिन उन्हां ने काम कीता वो भी उन्हां नूं मिलदा सीगा मेहनताना उन्हां दा। ते वो किसे तों इस तरह पैसा नहीं लैंदे सी, ना ही किसे तों इस तरह की मेहनत लैंदे सी। तो हर एक मतलब एक ऑल्टरनेट डे दे उत्ते उन्होंने जाके पानी पाया। तो इस दे अलावा नाल नाल उन्होंने एक चीज़ होर की, कि जिस तरह कि जड़े पशु आते सीगे चरण वाले उन्होंने तो बचाव वास्ते, जिस तरह मैं दस्सिया कि कोई भी ज़्यादा बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं सी उन्होंने वास्ते, तो उन्होंने उत्थे दीआं जिहड़ियां झाड़ियां होंदियां कांटियां वालियां उहदी ही एक बैरीकेटिंग जी रेडी कर देनी हर एक पौधे दे आस पास, ताकि जड़े चरण वाले पशु है वह इधर नूं ना आके उस सैपलिंग नूं, उस छोटे पौधे नूं खा के ख़त्म ना कर देन। तो जदों वह पौधा वड्डा होण लगदा सीगा, तो उस तों बाद विच जिहड़ी बाड़ जी सी आसे पासे दी उह उदों हटाई जांदी सी। तो इह वी इक नेचर दे दित्ते होए नैचुरल तरीके नूं यूज़ कीता जांदा सीगा उन्हां प्लांट्स नूं बचाउण वास्ते वी। उन्हां दे नाल जदों उन्हां दे बारे च सुनदे आ या पढ़दे आ ना, तो कहिंदे उह कहिंदे आ कि प्लांट्स जड़े ने, पेड़ पौधे जड़े ने, वह मेरे वास्ते रब दी तरह ने। और ये सारा कुछ जो मैं कीता सोसाइटी वास्ते भी, तो हले भी कर रहा, तो करांगा भी, ये मैनू बहुत ज़्यादा सुकून दिंदा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा परसनली कनैक्शन महसूस हुंदा मैनू इन्हां पेड़ पौद्यां नाल।

आ गए ना मच्छर। ए तड़े ओ कोल मच्छर नहीं आया, मैं ही मच्छर वांगू तानू तंग करन आया जी। तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा जी नेटवाणी और दोस्त तुहाडा कुलदीप तुहाडे नाल जुड़िया होया जी। मच्छर मैं तुहानू तां भेजे तुहाडे कोल क्योंकि गर्मियां दे विच ना मच्छर जिहड़े आ बहुत ज़्यादा हो जांदे ने, और मच्छर जिहड़े आ बहुत ज़्यादा नुकसान भी करदे ने। और मच्छरां तों बचण लई तुसीं की करना है? वैसे वैसे तो बहुत सारी अपडेट्स आदियां रहिंदियां ने, नैट दे विच काफ़ी कुछ आंदा रहिंदा ने, और तुहाडी गलियां दे विच जिहड़ी आ म्यूनसिपल कारपोरेशन दे जिहड़े बंदे आ उह जिहड़ी गैस आ मच्छरां नूं बुझाउण वास्ते उस दा छिड़काव भी करदे ने। कई दवाइयां भी जिहड़ियां वरतियां जांदियां ने, पर तुसीं घरेलू उपाय भी उस दा कर सकदे हो, जिस जिवें कि मच्छरदानी दा उपयोग तुसीं कर सकदे हो। और इस तों इलावा घर दे आले दुआले पानी इकट्ठा ना होण दिओ जी, बिल्कुल जी। मच्छर जिहड़े आ उह पैदा कित्थे हुंदे ने? खड़े पानी दे विच। तुहाडा कूलर है, कोई पुराना टायर है, कोई पुराना टोया है, कोई नाली है, या कुछ भी है उहदे विच पानी खड़ा है, तां मच्छर जिहड़े आ उह पैदा होणगे ही। मच्छरों तो जो बचना है सब तो पहला पानी, कोई भी आले दुआले कोई पानी खड़ा है उसनों खड़ा ना होंदे हो। जो ज़्यादा पानी है उस दे विच कोई दवाई जिहड़ी भी है मच्छर भजाउण वास्ते जिहड़ी हुंदी है वह तुसीं पा सकदे हो। उस तों इलावा जिहड़े आ पूरे कपड़े पा के रखो, बच्चों भी पूरे कपड़े पा के ही बाहर भेजो। जो नहीं पा सकते तो एक मेडिसिन आती है जिहड़ी कि क्रीम हुंदी है वह तुसीं अप्लाई कर सकदे हो, जिहदे विच DEET पिकारीडिन या फिर ऑयल ऑफ लैमन इक्योलिपटिस वालियां मच्छर भजाउण वालियां क्रीमां जां स्प्रे उह तुसीं लगा सकदे हो। ऑयल ऑफ लैमन इकालिप्टस वालियां मच्छर भजाउण वालियां क्रीमां जिहड़ियां उह तुसीं उह लगा सकदे हो। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਇਲ ਆਫ ਇਕਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਓਇਲ ਆਫ ਇਕਾਲਿਪਟਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਰੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਰੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ

अयो कई सारे तुम लोग, हम आ गए अरे आपको एक गर्मी की अच्छी सी ड्रिंक बनाने के देता है आने के लिए। गर्मी बहुत हो चुका है जी, बहुत बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है जी। ये बिल्कुल गर्मी इतना हो चुका है जी, जब भी बाहर में जाता है ना तो वो हमारा पैर पैर नंबे नंगे पैर जो भी जाता है ना तो वो पैर ऐसे उठा उठा के चलता है कि जैसे भांगड़ा डालने का ही। हाँ जी, आप आपको बताएंगे जी, हम अपने एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक जो गर्मियों में गर्मियों में ना SGOTPT बढ़ जाता है अपना, किसी का बंदे का भी गर्मी में ना SGOTPT बढ़ जाता है। और जो जहाँ पे भाई साहब बैठे हुए थे वो बाहर गए हैं, मैं फटाफट आपको बताने के लिए आई गया जी, क्योंकि डॉक्टर से बचने का, क्योंकि गर्मी से बचने का और गर्मी में अच्छा सा ड्रिंक पीने का, सुबह सुबह पीने का और तंदुरुस्त रहने का, करने का कुछ नहीं है। मंडी में जाने का, मंडी में जाके आलू बुखारा, आपको पता है आलू बुखारा एक जो होता है लाल से रंग का होता है ना, जो लाल से रंग का बहुत ही ज्यादा लाल से छाई सा होता है ना, उसको बिल्कुल नहीं देखने का, उसको देखोगे तो और लाल हो जाएगा। और लाल नहीं होने देना उसको, लाल नहीं करने का, उसको देखना ही नहीं है, हमने उसके पास जाना ही नहीं है। हाँ, आपने पता कहाँ जाना है, आपने जाना है जी एक पंसारी की दुकान, पंसारी की दुकान पता है ना, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नुस्खे वाली दवाइयाँ जो वो मिलती हैं, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको लेके आना है। कौन सा क्या लेके आना है आपको, लेके आना जी एक सूखा आलू बुखारा, बिल्कुल जी उसका ही भाई है जी, वो लेके आना है और उसको वो पैकिंग में देगा, पॉलिथिन में देगा, डब्बे में डालेगा और आपको घर में लेके आना है। घर में लेके आके कुछ नहीं करने का, उसको फ्रिज में डाल देने का। आप भी बोल रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं, फ्रिज में डाल देने का तो उसको क्या करने का, फ्रिज में डाल के उसका कुछ नहीं करना, उसका अचार नहीं डालना, कुछ नहीं करना, उसको आपने रात को 8 बजे निकालने का, निकाल के उसको एक मिट्टी वाले बर्तन में डालने का, मिट्टी वाले बर्तन में डाल के मिट्टी वाले बर्तन में उसको डालना है, 3-4 पीस उसके डालने हैं, और एक धागे वाले मिश्री होते हैं ना, धागे वाले मिश्री, मिश्री पता है, मिश्री मिश्री मिश्री मिश्री क्या होता है ये, और धागे वाले मिश्री होता है, उसको निकालने का, उसको झुक झुक झुक झुक करके तो उसको तोड़ने का, और तोड़ने के बाद उसको उसमें डालने का, और साथ में छोटी सी इमली का टुकड़ा वो डालने का, और उसको पानी से भर देने का। पानी से भरने के बाद उसमें उसको ना पूरे 12 घंटों तक उसको रोकने का, वहां पे उसको रख देने का, और उसकी तरफ फिर देखना ही नहीं है, फिर सो जाने का, खाना खा के सो जाने का, सुबह जब भी उठोगे 12 घंटे बाद उसको सुबह उठते ही

पीने का। ये जो ड्रिंक है आपके लीवर को एकदम सेट कर देगा और 7-8 दिनों के अंदर अंदर आपका जो एसजीबीटी ओटीपी बढ़ा है वो भी आपको डाउन कर देगा। ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है आपका। ओ भास्कर भास्कर पर हवा की तू अभी बोर करी जाना, चल जा चल जा चल जा तू इतों। वैसे पता नहीं कितों आ गए। चलो ड्रिंक इन्हें वधिया दसी है कि यह जी ड्रिंक है ना थोड़े थोड़ी गर्मी जी बॉडी के शरीर के गर्मी आ उसू जरा घट कर दी है। SGOTPD का लैवल भी जरा भी घट कर देंदी है जी। बिल्कुल जी सुके आलू बुखारे लैके उसू रात भिओना है जी। जे मिट्टी के बर्तन के उस धागे वाली मिश्री है थोड़ी जी पानी है और नाल ही थोड़ी जी इमली जो तुम पा सकते हो। इन लगातार 7-8 दिन जो थोड़ा SGOTPD वाधा है तो यह थोड़े लिए बहुत वधिया जी ड्रिंक है सवेरे जी तुम पी सकते हो। तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा जी नैटवाणी और नैटवाणी के थानू असी बहुत वधिया वधिया जी गीत भी सुना रहे हैं जी। सो

FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और रात दे 10 बज चुके ने स्टूडियो दी घड़ी दे विच समा हो चुके है जी 10:01 और ये थोड़ा मन पसंदीदा प्रोग्राम शामे गजल नू शुरू करन दा समा हो चुका है जी। दोस्त थोड़ा जुड़ चुका है जी कुलदीप थोड़े नाल और इस प्रोग्राम दे विच गजलां दा सिलसिला चलेगा और थानू प्यारी प्यारी जी शायरी ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ

तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में सनम, तू अकेली तो नहीं।

हो जाते हैं। कदम कदम पर इम्तिहान है, हर मोड़ एक नई कहानी है, कभी धूप है कभी छांव है, यही तो जिंदगी की रवानी है।

बिखरी जो जुल्फें चेहरे पर उनके, तो जैसे रात ने दिन का लिबास ओढ़ लिया। हवा ने जो छेड़ा इन काली घटाओं को, तो फिजाओं ने भी एक नया राज खोल दिया।

किसी महबूब को मनाने वाला खुद गुलाब लगता है, मेरा यार चांदनी में नहाया हुआ आफताब लगता है, लाख मनाने के बाद भी रूठा रूठा सा मेरा चांद हर हाल में फिर भी नायाब लगता है।

मन में बसी एक प्रीत है तू, जीवन की मीठी जीत है तू, धड़कन की लय रूह का साज, मुस्कानों का प्यारा आगाज है तू, तेरे होने होने से महकी है हर एक गली, जैसे खिलती हो कोई खुशबूदार कली, वक्त में रुक जाए जब तू मुस्कुराए, तेरी सादगी में सारा जहान समाए।

जब जब लड़खड़ाए तुम्हारा हाथ ढूंढते हैं हम अंधेरे में यूं चिराग ढूंढते हैं, जानते हैं अपने हिस्से का सफर तय करना है सबको तन्हा, मगर फिर भी न जाने क्यों हर कदम पर हम तुम्हारा साथ ढूंढते हैं।